0: फुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुही
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेछ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
4: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
3: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल लिएर इठ कबु झलै फटाका आज इठ का कना हो बाबा थियो ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनल से त लड़का सामान निहेरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर इठी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झलै फटाका इठ बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: थ कहाँ से लनब वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रगैया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरा दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रही ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रगैया झोला उद्योग में रगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: आज के ताले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर ताले लीते कैश फिर ताले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दंत रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिकल लीगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा हुने बारे को सूचना
3: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिवारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ
1: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे
3: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-892

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। कैलाली में भूमिहीन सुकुमवासी और अव्यवस्थित बसोबास उकरण दशैं आगे लाल पूजा बटमा तैयारी। विद्यार्थी उकरण सामाजिक विषय अध्ययन करनामा कठिनाई। शिक्षक उकरण के कहे बाल बालिका उकरण भूगोल सामाजिक परिवेश सिकेना आवश्यक। आज देश के पहाड़ी तथा हिमाली भूभाग में वर्षा के संभावना। तराई क्षेत्र भर मौसम सामान्यतया बदलना। आज तमाम कार्यक्रम करके अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई थी। आप पूरा खबर। हाल देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा मानसून की न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास रहलक ओर से हाल देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बा। मध्य प्रदेश तथा कोसी प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलना के साथ ही गंडकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफल रहने बा। कोसी बागमती कर्णाली प्रदेश के कम स्थान में चट्टांग सहित हल्का से लेके मध्यम पानी पड़ते रहल बा। आज दोपहर के कोसी और मध्य प्रदेश के साथ ही देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना हो। बागमती गंडकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलना। बाकल से देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में चट्टांग सहित मध्यम पानी पर्न संभावना बा। मध्य प्रदेश तथा कोसी और बागमती प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान और गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में एक दो स्थान में चट्टांग सहित वर्षा के संभावना रहल बा। आज रात के देशभर साधारणतया मौसम बदल सकने बा। कोसी बागमती गंडकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान और लुम्बिनी प्रदेश के कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय भूभाग में कम स्थान में चट्टांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान तथा मध्य प्रदेश के एक दो स्थान में चट्टांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल महाशाखा से जनायल बा। कैलालीमा भूमिहीन संबंधी समस्या समाधान आयोग से जिला समिति से आपन काम है तीव्रता बनायल बा। प्रमुख जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग से जिला समिति से काम है तीव्रता दे के दशैं आगे नए लाल पूजा वितरण के काम शुरू करना योजना साथ काम होती रहल बा। कैलाली के भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग से जिला समिति से आपन काम है तीव्रता देहल बतागिल बा। प्रमुख जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग से जिला समिति से गैल असार से लेके काम शुरू करल बा। करीब 2 महीना के अवधि में कैलाली की 13 स्थानीय तह में तथ्यांग प्रविष्ट करके जग्गा खोजी नापजाच लगायत के काम संचालन होती रहल बा। जिला भूमि संबंधी समस्या समाधान समिति के अनुसार जिला में हालसम 1,37,000 से ढेर भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी अव्यवस्थित बसोबास उकरण के तथ्यांग प्रविष्ट हो सकल बा। तथ्यांग प्रविष्ट के काम तीव्र गति में आगे बढ़ती रहल समिति से जनायल बा। भूमि समस्या समाधान आयोग से जिला समिति से समन्वय और सहजीकरण के काम करना रल सेफेन करीब 80% काम स्थानीय तहके जिम्मेवारी में पर्ना समिति के कहाइबा। स्थानीय तह में भूमि प्रशासन शाखा समिति से खटल प्राविधिक कर्मचारी जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के सक्रियता में काम के समेत गति निर्धारण करके वहां हाल ही काम सेकना करके नई समिति बना सकल बा। स्थानीय तह से जत्रा हाली काम करल खंड में कैलाली में भूमिहीन दलित हो भूमिहीन सुकुमवासी उकरा उतरे हाली लाल पूर्जा समेत वितरण कर सकना भूमि समस्या समाधान आयोग के जिला समिति से जनायल बा। मनो अव्यवस्थित बसोबासी उकरण के हक में भर समय लगना बता गिल बा। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के जिला समिति कैलाल के सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय कैलाल के प्रमुख केशवराज लेखक के कहेवा सदस्य सचिव लेखक के अनुसार कैलाल की जानकी गांव पालिका भचनी गोदावरी नगर पालिका के तुलनात्मक रूप में मजा काम करती रह कल से एमनाफे भचनी नगर पालिका अविन्फे मजा काम करती रह को कैलाली में समेत पूर्जा वितरण के काम भजनी से शुरू होना देख गिलक सदस्य सचिव लेखक के कहेवा और स्थानीय तह से भूमि हिन्द दलित सुकुम्बासी समस्या अव्यवस्थित बसोवासी उन्न के लग नाप नक्शा के काम करते रह उस तरह के सकूत तथ्यांग समेत कहाँ पुगल बा इस विषय में समेत समेत से हाली काम करना तो टाके टाक करती रहक सदस्य सचिव लेखक के कहेवा कैलाली के सबको स्थानीय तहमा प्रगति समान नहीं हो सदस्य सचिव लेखक के अनुसार भजनी गोदावरी और जानकी में सबसे ढेर काम आगे बढ़लवा कलसी टीकापुर जोशीपुर में काम के प्रगति सबसे कम हुईलवा और स्थानीय तहमा भर मध्यम प्रगति समेत हुईल बटाइलवा कलसी टीकापुर में तथ्यांग प्रविष्ट करना काम हुईल से फेन और पास के प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं सकल हो कल से जोशीपुर में काम भरखर शुरू करल बा समिति के अनुसार विगत में आयोग से काम करल वो आवेदन के आधार में कैलाली में कुल 1,40,358 जन के निवेदन दर्ता हुई बा लाओ समिति से हाल लाओ आवेदन मांग करल बा हालसम करीब 20,000 बीघा जगह के नाप जांच हो सकल बा कैलाली में भूमि संबंधी समस्या समाधान के काम है समेत गति देना जिला समिति और स्थानीय तह बीच निरंतर समन्वय होती रहलवा नेपाल में भूमिहीन दलित अव्यवस्थित बसोबास संकरण के भारी संख्या में रहल जिला के रूप में कैलाली में ई प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहल से फेन सक्रिय में स्थानीय तह से काम आगे बढ़ा के समग्र जिला के प्रगति बढ़ेना समेत रणनीति समिति से लेहलवा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पांच फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: लो इतनी छिटो आमा बनने लागो तो
2: बेला भागन ना चाहती उसे था पाव दे चु सब समा बनी घर में सके न सके सभी काम करने पर सब तो कारण था अपनी काम करने विदेश जानू आजा के करने के न करने के लिए था जाएना मैं तो जान में पड़े जैसे लगता
1: जिस तरह हम लोग पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह करे रा अपने वर्तमान र भविष्य दुबे अन्योल में पारी 20 वर्ष मुनि हमें कसे ले पनी विवाह वा भागी विवाह नगर हो
3: जानकी गांव पालिका 9 नंबर वड़ा कार्यालय द्वारा जनहित में जारी संदेश
4: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई फेस हुनु मुटुको धड्कन कम वा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पाछि फेर्से स्वागत बा। पहिले पढ़ाई लिखमा समेत अंग्रेजी गणित अप्ठ्यारो लग्न विद्यार्थी उक्रण आजकल बच्चा उक्रण सामाजिक विषय अप्ठ्यारो लग्ती बा। विद्यार्थी उक्रण और विषय संगे सामाजिक मा फे अप्ठ्यारो लग्ती रलक बटैले बाट कक्षा 9 मा प्रतिरलक विद्यार्थी अमर चौधरी और विषय से फे सामाजिक विषय अप्ठ्यारो लागल सुनाइल बाट सकर टीका साइए फे सामाजिक विषय मौलिक भाषा और परिवेश में लिखे पर्न रलक वर्षे परीक्षा में कठिनाई प्रति रलक बटैले बाट स्तक पूजा रावल फे सामाजिक विषय में अतिरिक्त ज्ञान नहिले कोर्से समस्या हुना करल बटैल बाट स्तक नीलिशा विश्वकर्मा फे सामाजिक विषय के परीक्षा रलक दिन दर लगती रहल अनुभव सुनाइल बाट विद्यार्थी प्रशंसा शाह पूजा बोगती हेफे सामाजिक विषय से फे समेत और विषय सहज लगती रहल बटवेले बाट त्रिभुवन मावि बतनपुर के प्रधानाध्यापक रविन्द्र बहादुर कठायत के अनुसार सामाजिक विषय और बाकी विषय के परीक्षा में पूजना समेत प्रवृत्ति फरक रहल बा। सामाजिक विषय में सृजनात्मक को मौलिक खाल के प्रश्न पूछ्न रहले कुर्सी विद्यार्थी उकरण कठिनाई लागल बा। कलसे विद्यार्थी उकरण के किताबी बात माकेल पढ़के विद्यार्थी उकरण के सामाजिक परिवेश मौलिक सृजनात्मक को व्यावहारिक बात में ध्यान समेत देनामा सहज हुना कठिनाई समेत हुइटरलक कडायत के बताइल बाटै। तमाम कार्यक्रम के साथ आज देशभर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाइती बाटै। ई वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मूल नारा विभिन्न परिवेशमा साझा संघर्ष रहलबा। युवा हुकरण की भूमिका के महत्व है दर्शाइना उद्देश्य के साथ दिवस मनाइन लागिल बा। सन 2000 से लैके संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में अगस्त 12 तारीख से लैके ई दिवस मनाइती आयल बा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाइना के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में युवा केन्द्रित समेत बहस पैरवी करना नीति निर्माण समेत कार्यान्वयन में युवा सहभागिता बढ़ाइन रहल बा। अभिन फिर साझेदार एवं लगानी समृद्धि करना युवा मैत्री शासन प्रवर्धन करना सहयोग करना समेत युवा केन्द्रित सरकारी गैर सरकारी निजी संस्थान निकाय बीच सहकार साझेदारीमा समेत अभिवृद्धि गर्न रहलबा। कलसै दिवसकै अवसरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा विशेष समारोहकै आयोजना करगिलबा। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि तथा समेत स्टाफ अप समेत व्यवसाय सम्बन्धी प्रदर्शनी करगिलबा। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार 2078 अनुसार 16 से लैके 40 वर्ष उमेर समूहकै जनसंख्या 1,24,12,173 अर्थात कुल जनसंख्या के समेत 42.56% रहलो। युवा व्यवसाय हुकरण समेत मानव जीवन में समेत अत्याधिक जोश जांगर उत्साह फे समेत ओ शक्ति रलक उमेर समूह के रूप में लेहल मान गिलवा। सरकार से सुनसरी और सिराहा जिला में हुईलक प्रदर्शन के क्रम में मृत्यु रलक 4 जहन हे सहित घोषणा करना निर्णय करल बा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकूद तथा सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल के अनुसार मंगलवार के बैठक मंत्रिपरिषद के बैठक से निर्णय करल की हो। बैठक से सुनसरी जिला के ओम प्रकाश मेहता जय प्रकाश मेहता रविन्द्र कुमार मेहता हो सिराहा जिला के करेश कुमार यादव हे सहित घोषणा करल की हो। चितवन राष्ट्रीय निकुंज के मध्यवर्ती क्षेत्र में बघुआ के आक्रमण से एक जहान के मौत हुई। कलश पश्चिम चितवन के मेघौली मरलक हरियाली सामुदायिक बनवा में एक पुरुष के शव फैला पड़ल। सूचना प्राप्त हुई निकुंज के सूचना अधिकारी अविनाश मगर जानकारी दिल बाटे। सब भेटायल स्थान लगह बघुआ रहलक ओर से हथिया प्रयोग करके बघुआ भगेलक और सब नियंत्रण में लिहल समेत काम हुई बटैले बाटे। यद्यपि भरतपुर महानगर पालिका 28 जीतपुर निवासी 61 वर्षीय समेत बागले बोटे संपर्क में निरलक स्थानीय से जनायल बाटे वहां उहे हरियाली सामुदायिक वनवा में घास काटे गए रहें। खोज खबर में एक घड़ी फेन से विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिकाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 टोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
6: तपसिल
7: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सकल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
6: बैंकको सकल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
7: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
6: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
7: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
6: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
7: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
8: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
9: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
10: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
11: मैनै जे वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
10: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
11: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846-77417। विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। भारत के वाराणसी से समेत संचालन के समेत हुई इलाक रेलवे सेवा नेपाल भारत सीमा के रूपैदिया स्थित की नेपालगंज रोड स्टेशन समेत विस्तार हुई पाछे पश्चिम नेपाल के व्यापार, पर्यटन तथा आवागमन में लाभ संभावना देख गिलवा। भारतीय रेल मंत्रालय से वाराणसी समेत सिटी गोरखपुर रेलवे सेवा रूपैदिया स्थित के नेपालगंज रोड स्टेशन सम विस्तार करना निर्णय करलाक ओर से नेपालगंज सहित के बाकी बर्दिया हो पश्चिम नेपाल के व्यवसाय और सर्वसाधारण हुक्रा उत्साहित हुईबाट सेवा विस्तार पास पश्चिम नेपाल के भारत के प्रमुख व्यापारिक तथा धार्मिक शहर संगे रेल मार्फत प्रत्यक्ष जोड़ जिना हुआ। भारतीय रेल विभाग से सार्वजनिक करल अनुसार समेत 132 वाराणसी समेत सिटी नेपालगंज रोड एक्सप्रेस हो 15131 नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी एक्सप्रेस संचालन ऐना कहलवा इसे भारत के भारी व्यापारिक शहर हो मुख्य बाजार सम पश्चिम नेपाल के नागरिक उकरण के पहुंच सहज होना अपेक्षा करगिल बा। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के सांसद अमरेश कुमार मल्ल से भारत में रोजगारी तमाम पेशा में व्यवसाय में रलक नेपाली नागरिकों का भोक्ति रलक समस्या समाधान के मध्यानाकर्षण करायल बाटे। प्रतिनिधि सभा के बैठक में बोलती वहां भारत में रहल नेपाली हुकरण के सुरक्षा अधिकार के विषय उठायल बताइल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैन से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से कैलाली में भूमिहीन सुकुमवासी और अव्यवस्थित बसोबासी उकरण दशैं आगे लाल पुर्जा बटना तैयारी विद्यार्थी उकरण सामाजिक विषय अध्ययन में कठिनाई शिक्षक उकरण के कहाई बाल बालिका उकरण भूगोल सामाजिक परिवेश सीखना आवश्यक आज देश के पहाड़ी हिमाली क्षेत्र में वर्षा के संभावना तराई क्षेत्र में भर मौसम साधारणतया सफा रहना वास तमाम कार्यक्रम करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई गीता बकलर थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासम सुनकर विराम
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
13: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
12: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
13: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
12: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637272।

0: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 औं वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना।
1: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 औं वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिबारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
0: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगा आश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे।
1: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-5308-92।
2: टीकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालयको वडावासी नगरवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
3: जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाई सराई, सम्बन्ध विच्छेद तथा मृत्यु दर्ता लगायतका घटना भएको 35 दिन भित्र अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं।
2: कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अघि वडा कार्यालयमा दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गरौं। व्यवसाय दर्ता नगरेको भए तत्काल दर्ता गरिहालौं।
3: ढल वा सड़कमा व्यवसाय नगरौं। सार्वजनिक स्थलमा ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री नथुपारौ।
2: घर वा पसलबाट निस्किएको फोहोर मैला जथाभावी नफालौ। चौपायालाई छाडा नछोडौ। सड़क छेउमा नबाधौ।
3: एक घर तीन बिरुवा अनिवार्य रोपौ। सबै प्रकारका करहरू समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व हो।
2: आफ्नो नगर सफा सुन्दर बनाउन आआफ्ना ठाउँबाट लागौ।
3: वडा कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुझाव र गुनासो भए वडाको फोन नम्बर 091-5308-77 र वडा अध्यक्षको फोन नम्बर 98-48-44-598 सम्पर्क गर्नुहोला।
2: 1 नम्बर वडा कार्यालय टीकापुर नगरपालिका।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
5: अदि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बना कान से के कत्रा सुघर बना कान लबाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाए कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-6-84-41-208 और 98-4-86-39-261।

0: आइपुडल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे घुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएका अनला बाटी
1: ए ले ले ठिकै बा चल हाली भाटवट खाइ आऊ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: सेता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ऑफिस प्रतिशत कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो I'm going to go to the house.
4: बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा

0: कबू का पिए रही था, कबू पेन सिले रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना।
1: टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिबारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
0: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे।
1: टीकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-892।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
4: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
0: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
1: शिविर सञ्चालन हुने स्थान
0: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म,
1: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म,
0: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म,
1: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म,
0: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
1: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
0: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
6: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
0: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय, सम्पर्क नम्बर 98485-018-88, 98485-015-56 र 98486-13434।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
5: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
6: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
3: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एब्रिला टेरस
8: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एब्रिला टेरस
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
7: प्रोपराइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484-46673 र 98164-60204
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम छोटनी के सलाह के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रहकन स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहत माय मिशन और मेगा बैठक में बैठ के साथ भेटे बाबू रत्नापुर मगर और मई बाटो अपने संग्रह माय मिशन संगे कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई मैं फिर एकदम आराम बाटो अपने फिर एकदम आराम हुई कना भरपुर राशि में बटू जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में यात्रा में जहां रले सेवन कार्यक्रम में सहभागी जन भी कना मैं अपन जानकारी करती बाटो संगारी ये दोपहर समय बाल छी समय हे एकदम छटकार घाम बा लागल एकदम चर चर चर आइट हुई शायद अपने पटाई हुई आज गर्मी बा काल फिर गर्मी रहा आज फिर गर्मी है बा तो आज असहज कुछ महसूस हुई थी लागत महीन घाम के मारे तो जे जहां रले से बहन एकदम गर्मी है कुछ हदसम्पन्न छा एक लग शीतर शीतर महसूस करती जहां हुई भी सेकबी कल से शीतर शीतर हवाई न ठाव में गुमसुम रहल ठाव में ना रही कम जहां और ये गर्मी में पानी एकदम ढेर पीबी और ये गर्मी में घाम लागल बेला में बाहर निकले पड़े से अपन शरीर है सेफ्टी करके चाहिए अपने नेंगी का नाम है अपने आर्ज करम और एकदम जोरदार घाम लागल बेला में बाहर घाम में काम चाहिए बिसा बिसा के काम कर भी का नाम है अपने अनुरोध करती कार्यक्रम में चाहिए विशेष करके अपने के रोजल खोजल सोचल मन पड़ल गीत सुने के कार्यक्रम में सहभागी जने भी ओकलक हमने लाइन खुला कैले बाटी जहां अपने कोई भी गीत मन पड़त कल से हमन कभी महीन ई गीत मन पड़त गीत के बोल ई हो गीत मन पड़ने के दुई कारण ई हो और ई एल्बम या फिल्म हो सेक बीटो नाम बताइबी और नई सेक बीटो क्लियर रूप में गीत के बोल बता देवी के नाम अवलोकन जानकारी करती कार्यक्रम में अपने है वो गीत हमें सुनाब और अंतिम एक जन के नाम लेवी के नाम जानकारी करम कहती अठी पर एक शुरुआत में एक रमाइलो गीत जोरब गीत के बाद समय नहीं बाटू अपने अपन रोजल खोजल सोचल मन पड़ल गीत सुना मन हुई कल से कार्यक्रम में सहभागी जनती करी तत्सम लग इन्जॉय करी रमाइलो करी गीत से

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतको बाजा पुनः स्वागत बा कार्यक्रममा बाटोमा मिशन निकै साथ धेरै बाबु रत्नपुर मगर यो रेडियो टिकापुर एफएम 101.6 कोही बेला मोबाइल बटे लाइन नै बोल गर्न चाहन के हुँदै कहाँ छ हजुर राम राम
1: राम राम
0: के बोल्ने कहाँ छ ए लाल बहादुर जी हो
1: हजुर
0: कैसिन बा लाल बहादुर जी के हाल खबर
1: एकदम ठीक बा जस्तै अपने कहते तमने सिस्टर में बैठ भी बगिया में बैठ भी के लिए बस वह बगिया में बैठला थे
0: बिल्कुल कौचा करे की आजकल बगिया में नए बैठ भी तो रुखा के हवा आई नहीं थोड़ा थोड़ा मजा महसूस हुई नहीं घरक भीतर गुमसुम बैठल रवि कल से घरक भीतर चाहिए बाहर के हवा चाहिए घरक भीतर प्रवेश नहीं कर पाए कल से हमन एक शारीरिक अस्वस्थ हस लागत का तो वो कारण से जांगर नहीं लगना कपार बठना ढिल जंगरार लगना मेरा का अवस्था हुई का तब मारे बाहर बगिया में बैठबो फुलरिया में बैठबो तो मन फ्रेश हुई स्वच्छ हवा मिल नहीं गर्मी फैन बा तब मारे
1: ओके आमिल आमिल खाइबो कागजी मजा
0: हुई कि नहीं हाँ आमिल चीज खाइबी तो विटामिन सी प्राप्त हुई शरीर में नहीं तो विटामिन सी के मात्रा शरीर में ठीक ठीक रही कल से अपने खोखी नहीं लगी ना तब मारे जैकेट मन विटामिन सी के कमी रहते वहाँ खोखी लगना संभावना फैन रह का तब मारे विटामिन सी पुगाए लगते कुछ कुछ मात्रा में चाहिए खाइक पड़त कागती नींबू भोकट या जैसी जैसी चीज चाहिए हमारे खाइक पड़ना हो समय समय में प्राय जैसी संघरन तो जस्ता तीना तरकारी में निचोर निचोर के फे खाई थे नहीं कोई दाल में निचोर के खाए कोई चाहिए नून खुर्सानी मिला के खाए कोई चाहिए कसी कोई के चाहिए अचार बना के खाए मतलब जिन जैसी सहज हुई वस्ते खैती रहते हैं कहो ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली खुशी लागल लाल बहादुर जी आजकल कौजा करती हमरे शिविर में बैठ के
1: हमारा
0: हल्का के व्यापार कैसे बा अपने के कुछ हल्का के
1: बुढ़ाल मने कहूँ जाए नहीं सकना में हल्का उल्का तो बीने पड़ल हजूर के
0: हल्का वल्का बीन के जैसे अपने के हल्का उल्का ले आई थी कि नहीं ऑर्डर ऑर्डर हुई कि नहीं
1: ऑर्डर हुई जे काल ही तो लेगी नहीं एक जाने
0: ओके अस्ते के बेचक पड़ल हल्का वल्का आपका है कि
1: खाली बैठल से पहले के जमाना के मन ही हमारे वस्ते नहीं रहना लागत कोई ना कोई हड़ताली करे पड़त
0: चाहे हल्का बीनी चाहे दिलिया बीनी नहीं
1: खैचा बीनी चाहे
0: हजुर हजुर चाहे खैचा कुछ कुछ करना हो तब तो 2-4 रुपया आई का हूँ नहीं
1: हजुर हजुर
0: बैठले बैठले मतलब का चीज आई
1: कुछ न कुछ वस्ते सुतल रही बैठल रही कुछ नहीं
0: आई जंगरेक सुख पेट एक दुख कठे ना
1: हजुर हजुर
0: जस्तो एक ठो बारी रह बारी में कुछ नहीं लगेबी तो कुछ नहीं हुई नहीं हाँ वो बारी में मानो अपने 10 ठो मिर्चक तेलवा लगा लेबी तो 10 ठो मन से 8 ठो मर जाए तो 2 ठो तो जी ना
1: हजुर मिर्चा करी तो हजुर के मैं नहीं किन थू बाजार से
0: तब तो
1: खाई पुग जाए
0: हाँ तो 2 ठो जी गाले से वह नहीं हो हमार मेहनत का तुम्हारा मेहनत करे पड़त जा हुई जैसे फिर खाली नहीं रहना हो ओके कार्यक्रम में मजा मजा बात हुई अपने से आज खुशी लागल घाम फेन एकदम जोरदार बा नहीं ढेर दिन पास संपर्क अली समझाना समझा एकदम खुशी लागल
1: मेहनत करना लागल लागल बस हमारे
0: एकदम एकदम एकदम खुशी लागल तो आज हमने अपने का कौन गीत सुनाई
1: वही वही सुने भी हमने का हुई आदिवासी तो हुई आदिवासी थारू हमारे धरती पुत्र तराई के ये वाला सुनाई थे
0: आदिवासी थारू हमले गीत सुनना मन बा आपने है
1: हजुर आदिवासी आदिवासी के दिवस रहे तो कहाँ सुनेबे नहीं के लिए
0: आदिवासी के दिन खैर किसिन किसिन गीत बजल पता ही नहीं चलल नहीं तर आदिवासी 24 गते के रहे वो दिन चाहिँ कैसिन रहे कना हो तो ये गीत एकचोटी कार्यक्रम में चाहिँ हमरे बजाइना प्रयास करब नहीं अपने लग बजाइना प्रयास करब और ये गीत चाहिँ हमार थन उपलब्ध हुई कल से जरूर है बजाइबी नहीं ये गीत कौसा करे मन पड़त
1: आदिवासी हुई और एकदम बढ़िया से गई थी का हजूर के वह हमारे में सुनना विचार बा
0: ओके अब गीत कौन सुने दी एक जन हम के नाम ली
1: हमार गलम के दोरिया बा ईश्वरी चौधरी
0: अबक लग विदा हुई राम राम।
1: एक चंद्र चंद्र जी आएगी नहीं अपने दोस्त वो फिर सुनी।
0: ओके ढेर धन्यवाद अबक लग विदा हुई राम राम।
1: हाँ जो राम राम
0: वहाँ फोन कैले रही वहाँ से हमरे बातचीत बतैली रमाइलो गफ हुई लाल बहादुर चौधरी भोपू कमैया
2: शिविर से वहाँ से हमारा गफ हुई वहाँ के फरमाइशी गीत रहे आदिवासी थारू हमरे धरती पुत्र तराई के वहाँ के गीत हमारे उपलब्ध बा की नहीं हुई घर से वहाँ प्ले कर देख लग मैं अर्जी करम और अपने जहां रही अपन रोजल खोजल सोजल सहभागी जाना के लग अपन रोजल खोजल मन परल गीत सुने के लग अपने हुई भी कल से हम कल करी सुने 91 5 61 255 लाइन खुलेबा।

0: हजुर, हामीले तम्ने आदिवासी गीत प्ले गर सोच्थी बजाब गर्न सोच्थे त अरू गीत चाहिँ प्ले हो गिलो गीत चाहिँ नै बजल हाम्रो बजाइ खोज्ली नै बजल खै कोही कुछ सायद समस्या हो गेल क्यो गीतमै लाल बहादुर जी ओकलक अपने सँगे क्षमा मांग्न चाहमै त मारे अरे गीत बजाइक पर्न बाध्य हो गेल हाम्रो अघि कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नोले चाहिँ हामन कल गर 2091561255 के लाइन एकदमै खुल्ला बा कार्यक्रममा सहभागी जनै 2091561255 अर्थात् 0915612255 लाइन एकदमै खुल्ला बा कार्यक्रममा जे जहाँ हुबी खेतमे बारीमे दोकानमे मकानमे काममे धन्दामे बिजीमे बिटालमे यात्रामे जहाँ हुबी जुन ठाउँमा हिबी टन्टलापुर घाम लागल बेलामे शीतल शीतल महसुस गर्ती कार्यक्रममा अपन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुन्न मन हुई थारू भाषा के तो हम चाहिँ कल करेक्ट पर्ना हुई 0915612255 अर्थात 0915612255 लाइन एकदमै खुल्ला भा कार्यक्रममा सहभागी जनाएको 0915612255 के लाइन से आइटे करबी का नाम आफ्नो कान जानकारी करती बारू तो करीब करीब 1:45 बजे समय यात्रा करबी कार्यक्रममा सहभागी जनेली और अपने के रोजल खोजल सोचल मनवरल गीत हाम्रो सुनाव का नाम आफ्नो कान जानकारी गर्न चाहन्छु फटाफट डायल करते गरी 0915612255 के लाइन हाम्रो एकदमै खुला गेले बाटी सँगै तो यी दुपहरिक समय हो अल्छीके समय हको सत्सम रमाइलो कार्यक्रममा सहभागी जनाइते गरी 0915612255 अथवा 0915612255 तो जहाँ हुई भी कहकर के बैठल बाटी दिन कसै के भेटेटी बाटी कसै चल्ती बा कोही टेलिफोन लाइनमा आल बाटे बोल्कन चाहन्छु हजुर राम राम
1: हजुर राम राम
0: मालु राम जी हो
1: माल राम जी
0: और बताए मालु राम जी कैसे हाल खबर गर्मी बा नहीं घर में बैठल बाटी कहाँ बैठल बाटी आज बगिया फुलरिया रुखवाटर घर में
1: हमारे घर ही बैठी
0: आज गर्मी बा बड़ा घाम बा उकुस मुकुस लागत हुई नहीं ओके कार्यक्रम में सहभागी जन एकदम खुशी लागल तो आजकल के दिन कैसे के बीते थी दिन भर घर ही बैठ के हो कि कैसे
1: अब दे लमकी जाए थी तो हेरी अब छुट्टी घाम लागल तो अब सब से घूम जाएगी नी
0: गर्मी तो गर्मी बाप टंडलापुर घाम दोपहर के समय में एकदम घाम में बा वही नहीं जोरदार ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली आज हमरे अपने है कौन गीत सुनाई मालू राम जी
1: कौन गीत
0: सुन भी आज अपने है हमरे अपन ओर से गीत सुना भी यहाँ से अपने कौन गीत सुन भी थारू भाषा के
1: मैं बर्दिया के हैंडसम थरिया छैली तू कैलाली बठिया वाला
0: ओके मैं बर्दिया के हैंडसम थरिया तू कैलाली के ब्यूटी बठिया ना ओके ये गीत हमरे सुना अपने लगी गीत मन पड़ना के दुठो कारण बताए का जी गीत मन पड़त
1: हमारा साल है अब मजा लागत एक दिन से पुरान पुरान गाना होना
0: तब मारे मन परत हो किन सुने भी एक जन हम के नाम ली
1: हमारा साली है गोमा देवी
0: ओके अब एक लग विदा हुई राम राम वहाँ फोन कई ले रहे मालू राम चौधरी लमकी चुहा सात खरौला से रमाइलो नियमित कलर वहाँ के फरमाइश गीत बा मई बर दिया के हैंडसम ठरिया तो कैलाली के ब्यूटी बठनिया तो आगे आगे जैठो तो काहे ला जैठो हाय ओके गीत जवाब गीत के पास समय एने बाटो

0: बन्जै बु मै तोहार दुल्हनी रमाइलो गीत सुन्ती सुन्ती फैन से कोई टेलीफोन लाइन में घंटी बजा सकल बाटे में बोल करना चाहन के दुई कहाँ से मैं वहाँ है स्वागत करना चाहता हूँ। हजुर राम राम।
1: राम राम हजुर राम राम।
2: सीताराम दहित हो?
1: हजुर टीकापुर से सीताराम दहित बोलता हूँ।
2: सीताराम दहित तो बोला थी मैंने, सितर सितर महसूस कराए पड़ल ना आज
1: मौसम तो कराई पड़ी सितर सितर
2: क्या करे की बड़ा चटकार घाम बा कह के सुना तो सबको जाने कहा नहीं बड़ा चटकार चटकार गर्मी बा वही घाम बा वही रुखाटर बैठल बाटी हवा आई था भुनफेन तारा घाम तो घामे बा बिगुल कह के कहा था महाराज सीताराम दहित जी आएगी ना। अब सीताराम जी सितर लगेंगे
1: सितर लगेंगे
2: तो और बताइए कौन सा करके दिन बिताई थी आज सीताराम जी?
1: दुकान में बैठा रहा तू अपन फ्रेश हाउस में फ्रेश हाउस में
2: आगे कैसी बा आजकल व्यापार व्यवस्था सीताराम जी के?
1: व्यापार तो अभी सावन महीना हो रहा है तो ठीक है रही अभी तो
2: सावन लागल बा नहीं
1: लागल बा सावन।
2: ओके तो अब चाहे घाम टपती बैठल बारी तब तो
1: हाँ घाम नहीं से मोर आज दुकान तक तो डेले रुको बा पिपरक रुको बा।
2: ओहो तब तो एकदम वहाँ तो मजा ही लागत थी ना
1: ठंडा
2: हजर। अरे कार्यक्रम में सब आगे जाने एकदम खुशी लागल। आज सीताराम जी हमन रोज दिन गीत सुनई थी अपने नहीं एकदम सुनई थी गीत मजा मजा मेर मेरा गीत सुनई थी आज हमरे अपने ही गीत सुना आप अपने कौन गीत सुन ली?
1: आज सीताराम के गाना लाल लाल टोपी
2: लाल लाल टोपी सीताराम चौधरी और अनु चौधरी के गायल गीत ना
1: आज।
2: ओके तो ये गीत हमें जोड़ब और एक गीत कौन सा करे सुनना चाहती दुठ कारण बताए पड़ल
1: आप सुनना तो अपन गाना फिर कब को सुने परत मजा लागत सुनत
2: अपन गाना कब कब सुने परत मजा लागत तब हमारे को है गीत सुनना चाहली।
1: हाँ
2: ये गीत किन सुने भी एक जन हम के नाम ली
1: ये मैं सुनाई तू कलेश राम चौधरी बाँचे बताए हमार संघर्या कलेश राम गीत गा देते वो।
2: ओके अब एक लख हमरे विदा हुई राम राम
1: राम राम।
2: वहाँ फोन के ले रहे सीताराम दही जी टीकापुर ब्लॉक
0: नंबर 14 से रमाइलो गए वहाँ की फरमाइश है गीत बा लाल लाल टोपी गुलियार फुनाना छैलिन के अंगना में मोर खेलाना। ओके हमारे गीत जोड़ब वहाँ के लग वहाँ के लगात वहाँ रेडियो सुन के बाद संपूर्ण संघारियों के लगी जोड़ब गीत के पास में बटो अपने के हम डायल कर देकर विश्व 91 5 61 255 अर्थात 09 1 5 6 1 2 5 5 डायल खुले बता सब लोग इन्जॉय करी रमाइलो गीत।

हजुर, मैले के सुन्दै सुन्थे अब त्यही भएर के खेल्छ व्यापारिक विश्राम दिन बेला हो ब्याकेज सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेक के पास मैंने बाटो डायल करते कर विश्व 91.5 61.2 सेवा सुन लाइन खुले हुए तस्म के लिए एक ही खसी सर्ट कमर्सियल ब्रेक।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: यो खाने मन तो कहाँ छ तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
4: तो एक्लो कहाँ ससरया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाई पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

हजुर, व्यापारिक विश्रामको पाछै पुनः स्वागतमा कार्यक्रममा बाटोमा हामी छन्मीको साथीले बाबु रत्न पुनमगर र यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz कार्यक्रम सुन्दी छोटमिट हरेक आतवार के बुधा के दिन ठीक 1 से करीब 1:45 बजेसम्म आए ठीक कार्यक्रम र लगभग कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागला विदा मंगना बेला हो गिल बात रबर्ट रेडियोसनको साथ दिला अपना धन्यवाद हमन कल करके साथी अपने सबको जनहन एकदमै धेर से धेर धन्यवाद देना चाहूँ हमन कल कैले रही आज शिविर से भूपू कमैया शिविर से फोन कर लाल बहादुर चौधरी वहां है धन्यवाद देना चाहे हम सके हमन कॉल कर ले रहे चाहे लमकी चूहा सात से खरौला से फोन कर ले रहे मालूराम चौधरी वहां पे धन्यवाद है मस्तक हमन कॉल कर ले रहे टीकापुर ब्लॉक नंबर 14 से सीताराम दही जी है वहां पे धन्यवाद और संगे उनके फोन डिस्कनेक्ट हुई बीच में संपर्क टूटी सकल वहां संगे बात नहीं हो सकल और हफ्ता जरूर बात हुई करना मैं जानकारी कर दी अंतिम माइक रमाइलो की छोरी टेक्नोवेट के साथ हुआ बाबू रत्नापुर में कहते देव से देव धन्यवाद देती मैं मिशन आज्ञा चाहम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ रहे रेडियो चिकापुर एफएम सुनते कर भी।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
6: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
0: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
1: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
2: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जार सेक्ल।
3: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में आल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
5: मिलन आल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: लेलीते
1: एंसल पैक किनलीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक लेलीते कैश फिर तक लेलीते
2: एंसल पैक किनलीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे गुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आंशकले कत्रा सुगर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भाटवट खाइयो जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स न गर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 ओ 98486 39261
2: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार

0: डेलिभरीका लागि
1: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
2: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017 10672। स्वास्थ्यका लागि पानी।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महिन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमकै सञ्जीक 5 बजे थारू भाषाकी खोज खबरमा पुनःकरण स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरीके राम राम अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्र नेपाली पात्र में फेसबुक रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुरमा खाना पकाइन एलपी ग्यासके अभाव उपभोक्ता समस्यामा ग्यासके अभाव खेपती रहलके विषयमा सांसदद्वारा सरकारके ध्यान आकर्षण अछाममा बाजुराके चारपालिका जोडके बढी मालिका रामा रोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा सलेनमा जीव दुर्घटना भेरी लद्यममा बेपत्ता दुईजनाकी पहिचान खुल ओता परम्बरसँग तराईकी जनजीवन प्रभावित

0: टीकापुरमा सक्कु ग्यास की विक्रेता संघ अब ग्यास की उपलब्ध नै हो। ग्यास डिलरमा ग्यास नै मिल पाछ उपभोक्ता ग्यास पैना सेक्लर नहिट टीकापुर के मनाकामना ग्यास के डिलर अलग न्यू एभ्री लाटेड एसमा उपभोक्ता के गरीब 400 खाली सिलिण्डर जम्मा हुआ चार दिन से आघ नेपाल ग्यास लेहे गैलक गाड़ी अफिन लौटल नै हो। ओहो करकलाग विक्रेता उपभोक्ता दुनू मार्मा पलक बुटिलोबाट डिलर संचालक गौरी देवकोटा फेरी ग्यास के विक्रेता राजू चौधरी फेमाक से ध्योर ग्यास कम उपलब्ध हुई ग्यास के अभाव देखलक बुटिलोबाट सेफल ग्यास के विक्रेता पुष्पराज देवकोटा फे एक महीना से टीकापुर माग अनुसार के ग्यास नहीं हुईलक बुटिलोबाट समय में ग्यास नहीं अलग कारण यहां उपभोक्ता गैस पुगिना समस्या हुई रहा सरकार आईएल निगम और गैस कंपनी के गैस के अभाव नहीं हो वहां उक्रा अपना समय में गैस पैलक नहीं सिकल गैस विक्रेता देवकोटा के गुनासो बा वहां के कहा गैस अभाव नहीं हुई से गैस कहां गए तर यहां एक महीना से उपभोक्ता के गैस पाई नहीं सिकल फुट अभी पर्याप्त मात्रा में गैस के कबैना होकर के बात अभी एक नहीं हो तर 200 सिलिण्डर गैस मंगाइल पाछ 50-100 सिलिण्डर ग्यास के लिकायत वकर कारण यहां गैस के धेर अभाव देखिल बा टीकापुर में भेरी रेडियंट मनकामना उ सफल गैस के डीलर रहलबा उ सबको डीलर में गैस के भाव देखल डीलर संचालक उनके कहाई रहलबा। विद्यालय में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के काम कर्तव्य अधिकार के बारे में जानकारी करी थी जानकी गांवपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानंद कपाडी बुटिलोबाट विद्यालय के शैक्षिक वातावरण निर्माण करना विद्यालय में गुणस्तरीय शिक्षा कायम करना शिक्षक कर्मचारी संघ विद्यालय व्यवस्थापन समिति फे हो तर अधिकांश समिति के सदस्य अपना विद्यालय में नियमित निगरानी करना गुणस्तर वृद्धि के लायक योजना बनाना व लागू करना बाटक की ठहना नहीं हो विद्यालय में बोलिलक बेला जैना हुईलक ठाव में हस्ताक्षर करना कलक पाइगिलवा अपना जन्ना बुझना सम विद्यालय में हफ्ता दिन में जैना व अभिभावक संघ भेट घाट करना करलक शक्ति देवी आधारभूत विद्यालय के विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी बुटिलोबाट वसंक विद्यालय के बोलक समय में विद्यालय जैना अपना समय में मिला के हफ्ता दिन में विद्यालय जाकी निगरानी करना करलक त्रिभुवन महावी बटनपुर के विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हिराला चौधरी बुटिलोबाट वसंक खड़क स्मृति महावी टीकापुर के विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तर्कराज रेग्मी विद्यालय व्यवस्थापन समिति के काम कर्तव्य और अधिकार के विषय में ध्यान अध्ययन करना आवश्यक देखना हुई वहां विद्यालय में समय समय में छटके चेक जांच करना हरेक बैठक में अपना मजाऊ नई मजा दुनुपक्ष जानकारी करना कलक वहां स्थकर के विद्यार्थी की समस्या बुझना शिक्षक तथा कर्मचारी की उपस्थिति और नियमित आदि बात में अपना सचेत हो कि आघ भरना बुटिलोबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति खास से अपना अधिकार क्षेत्र अध्ययन नहीं करलक विद्यालय प्रति चाशो धरलक ठा मजा भूमिका देखल से फे जहां समिति के चाशो धरल नहीं हो शिक्षक उक्र रल से फे वहां के स्वस्थ र विद्यालय में समिति के खास सक्रियता नहीं देखलक फे शिक्षा शाखा प्रमुख कपाडी बुटिलोबाट विद्यालय विकास म शिक्षक कर्मचारी जत्रहक विद्यालय व्यवस्थापन समिति फे भूमिका रहलबा विद्यालय प्रति सक्कु सरोकार धरना पक्ष जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठ बनेना जरूरी रहलबा। राष्ट्रीय सभा के सांसद थुक्र देशभर जनता के खाना पकाना गैस के अभाव खेती रहल विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करते जवाब मांगलबाट सभा के आज बैठक बैठक में सांसद थुक्र घंटौ लाइन में बैठक समेत गैस के नई पैलक भोक बैठपना अवस्था अलकती नागरिक कहियासम भोक बैठपना हो के प्रश्न कती समस्या तत्काल समाधान करना सरकार ध्यान आकर्षण करे बाट सांसद थुक्र सरकार के गैस समस्या नहीं हो कि करलक तर जनता के घंटौ लाइन बैठना समेत गैस नई पैना अवस्था अलकती समस्या समाधान कलक सरकार रूलिंग करना अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल समक्ष महाकलबाट सांसद थुक्र सरकार कोठा खाली रहलकती दलित समुदाय के कुछ मनहुक्र माइती घर में धरना बटी रह विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करेती समस्या समाधान करना महाकलबाट सांसद थुक्र सुनसरी के देवानगंज महिला घटना गंभीर रहलकती न्यायिक समिति मार्फत घटना के विषय में निष्पक्ष छानबीन करके दोषी कार्यवाही करना और कोनो फे जाति और धर्म के नाम हिंसा हुई नहीं देना करके समस्या समाधान करना महाकलबाट सांसद थुक्र सिराहा के गोल बजार में आगजनी के कारण भारी आर्थिक क्षति हुई को नागरिक के जल घर के क्षति देना तथा नागरिक की अवस्था धरोहर के ऊपर आक्रमण नहीं दोहराना करके ग्यारंटी करना महाकलबाट खोज खबर मई घड़ी विश्राम विषम पाछा फिर से विष्णु त्रेवी सामुदायिक रेडियो टीका एफएम
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
2: विस्मा ट्रेडर्समा पाइने सामग्रीहरू
0: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो,
2: हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर कैलाली।
0: अछाम बाजरा के चार पारिका जोड़ना बड़ी मालिका रामा रोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा करगिलवा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह बाजुरा जिला के बड़ी मालिका क्षेत्र व अछाम जिला के रामा रोशन क्षेत्र समेटना करके बड़ी मालिका रामा रोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा करवा। बुधवार धनगढ़ी में एक कार्यक्रम के बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश वन एन 2077 के दफा 26 के एक बमोजिम बाजुरा जिला के बड़ी मालिका क्षेत्र व अछाम जिला के रामा रोशन क्षेत्र समेटना करके बड़ी मालिका रामा रोशन वन संरक्षण घोषणा कलबाट। मुख्यमन्त्री शाहकी अध्यक्षतामा साउन 19 गतेको बैठक मन्त्री परिषद बैठक ओ क्षेत्र वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न निर्णय कल रहे। बाजुरा जिल्लाकै बड़ी मालिका नगरपालिकाकै वडा नम्बर 5, 6, 7, 8, बाजुरा जिल्लाकै त्रिवेणी नगरपालिकाकै वडा नम्बर 5, 6, 7, 9, अछाम जिल्लाकै मैलेख गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 1, 2 तथा अछाम जिल्लाकै रामा रोशन गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 4, 5, 6 सहितकै जम्मा 49.4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समावेश गरिबा। दुर्लभ जड़ीबुटी वन्यजन्तु पैनाई क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण के लागि सुरक्षित बनाइपर्न सुझाव विज्ञप्त गरिदिएले रहे। मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्तिम दिन शाह उक्त घोषणा गर्नबाट। भेरी लदियामा जीव खसलक गाड़ी सहित बेपत्ता हुलक दुईजना के पहचान खुलवास। पश्चिम सल्यान के वनगाट कुपिन्डे नगरपालिका एक अमरागा स्थित छिन्चु जाजरकोट सड़क खण्डमा बोलेरो जीप भेरी लदियामा खसके बेपत्ता हुलक दुनू जना के पहचान खुलवास। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यान के अनुसार बेपत्ता हुनमा चालक दाङ निवासी गरेब 23 वर्षीय हेमराज विसी हो। जीपमा सवार सल्यान के सिद्ध कुमाख गाउँपालिका चार निवासी गरेब 43 वर्षीय खलबहादुर राणा रहलबाट। घाइटेमा प्राप्त विवरणकै आधारमा उहाँकै पहिचान खुलक प्रहरी जनैलबा। यद्यपि बेपत्ता दुनू जनाकी अवस्था अभिन अज्ञात बा। बुधबार दिनकै गरिब 2 बजे होर बालुवा संघुहा उहाँसे सल्ली बजारतर्फ जैती कलक लु 1J3022 नम्बरकै बोलेरो जीप अनियन्त्रित ठोके सड़कमा से गरिब 20 मिटर तर फेरि लदियामा खस्ल रह। जीपमा चालक सहित 4 जना सवार रहे। दुर्घटनामा पर्के घाइते हुलक बनगाड़ कुपिण्डे नगरपालिका एक आप खुलवा निवासी 29 वर्षीय प्रेम बिका ओ 21 वर्षीय खुमलाल बुढ़ाठोकी के सल्ली सिटी अस्पताल सल्ली बजार में उपचार हुटी रहलवा। बिका के नाक तथा शरीर के ध्यादशीन भाग में चोट लगते फिर बुढ़ाठोकी के देब्रे ग्वार में चोट लगलवा। दुनू घाइटे के अवस्था मध्यम रलक प्रहरी जनेलवा। जीप सहित भेरी लदियामा बेपत्ता हुलक चालक बीसीओ यातु राणा के खोजी केलाक नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल के टोली घटनास्थल में खटलबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वन्तिर विसामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
5: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्ह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। तत्काल पोली क्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिहा अनुरोध करती। सत्कार पोली क्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोली क्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जाइब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट एल्युमिनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
9: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में बच्चा देखि बुढ़ा सम्मा टाउको देखि घुड़ा सम्मा को उपचार
10: टीचिंग हॉस्पिटल बाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फैमिली फिजिशियन डाक्टर सरोज खनाल बाट बिरामी को जांच तथा उपचार हुँदैछ।
9: आरोग्य मेडिकल मा पाइने सेवाहरू
10: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थायराइड दम सीओपीडी
9: नवजात शिशु देखि वृद्धसम्म को सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
10: बालबालिका को स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
9: महिला का समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्था को जांच
10: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायत को उपचार
9: आकस्मिक रोग को प्रारंभिक उपचार व्यवस्थापन
10: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुर
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजे देखि 10 बजे सम्म र साँझ 4 बजे देखि 8 बजे सम्म।
9: सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72।
0: साउन चौथो हप्तामा चाहिँ लगलग समेत पर्याप्त मनसुनी वर्षा हुने चकलग महतुरी सहित तराई मधेसमा गर्मी अत्याधिक बढ़लबा कुछ दिनहरू मध्याह के तापक्रम 38-41 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न लागलपा छ। महतुरी सहित मधेस प्रदेश के जिल्ला के जनजीवन प्रभावित हुलबा सूर्यसे संध्यासम चरक घाम लग्न वर्षा हुई लगत पुनः टन्टनापुर घाम लग्न क्रम गर्मी बहल बढ़े कि स्थानीय एकाही मध्याह घर बाहे निस्कना समेत कठिन हुना कलग गर्मी बहल पा छ। सर्वसाधारण दैनिक प्रभावित हुई लगभग छहारी में बैठक फेत तत्तरी पसीना आईना पंखम समेत तातुल हवा आईना कलक महाउक्र बोटिल जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय जनकपुर के प्रमुख राजीव झाले मंगलवार जनकपुर धाम के अधिकतम तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियम पुगलक बोटिल तापक्रम 41 डिग्री पुगल पा महसूस शून्य तापक्रम करीब 48 डिग्री सेल्सियन में देखलक वहां जानकारी दिल मधेश में मनसून पूर्ण रूप में सक्रिय नहीं कारण अपेक्षित वर्षा हुई निशेकलक वर्षा रोकलक लगत चर्क घाम लगलग वाष्पीकरण बहलक गर्मी थप चर्कल झा पुटिलो वहां के अनुसार आगामी 2 दिनसम्म फिर गर्मी के अवस्था अभिन नई रहल संभावना में बुधवार जनकपुर धाम के तापक्रम 39-41 डिग्री सेल्सियम पुग्न समेत अनुमान वहां करलक बुटिलो वातावरण विज्ञ अशोक यादव के अनुसार कुछ दिन हेर तराई मधेश में लू अर्थात तातुल हवा के प्रभाव बढ़ा मध्य प्रदेश के देहरूसिंह जिला में तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पुग्न लगलग तातुल हवा के जोखिम बहलक वहां बोटेलो कुछ दिन से आगा शुरू हुई कि अवसम शुक्रवार सम कायम रहलक वहां के अनुमान रहल बा। सरकार एनसीएल आईजीआई शेयर खरीद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिकै प्रतिवेदन 2080 सार्वजनिक कलवा मन्त्री परिषदकै मंगलबार बैठक पूर्व महालेखा परीक्षण टंकमणि शर्मा दंगालकी संयोजकत्वमा गठित समिति तयार पर्ला उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उहाँ उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका निर्णय कला रहे। मन्त्री परिषदकै उक्त निर्णय पाछा सूचना तथा संचार मन्त्रालय प्रतिवेदन सार्वजनिक कलबाट समितिकै प्रतिवेदन अनुसार एनसीएल आजियाटा साबिके स्पाइस सेल प्रालीकै रूपमा विक्रम सम्वत 2058 स्थापना हुँदै हालसम्म 14 शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री हुलक वा उहाँमध्ये अधिकांश कारोबार नेपाल बाहिर अफसोर संरचना मार्फत हुलकको वाकरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालकै सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश हुलक नै देखलक समितिकै निष्कर्षमा कैयौं नेपाली शेयर धनीकै कारोबारकै भुक्तानी समेत नेपालकै बैंकिङ प्रणाली मार्फत नहुकै विदेश महिलो देखा परल प्रतिवेदनमा उल्लेख रहल बा। यही समाचार संघ खोज खबर बनाइल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो टीकापुरमा खाना पकाइना एलपी ग्यास के अभाव उपभोक्ता समस्या ग्यास के अभाव खेती रहल के विषयमा संसदद्वारा सरकार के ध्यान आकर्षण अछामो बाजुरा के चार पालिका जोड़ना बड़ी मालिका रामरसन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा सल्यानमा जीव दुर्घटना भेरी लद्यामा बेपत्ता हो के दुईजना के पहिचान खुनल तापक्रम बढ़लसन तराई के जनजीवन प्रभावित दीता बकला खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भट्टराई यहां धन्यवाद दीती बकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदाई हूं एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयोग सुनती रवि राम राम।
11: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
12: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
11: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
12: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
11: अब त म ढुक्क
13: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनराज भाट
12: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: पेंसिल पैक किन लीजिए। जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओपीस प्रतिशत कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी।
1: कैश फिर तक ले लीजिए, कैश फिर तक ले लीजिए।
0: एंसिल पैक किन लीजिए। शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग।
2: टीकापुर को विकास का लागि के गर्दैछ नगरपालिका।
3: नगर विकास का लागि नगरवासी को दायित्व के हुनुपर्छ।
4: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको काम कारबाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर।
2: टीकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टीकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
5: बिहिबार दिउँसो 3 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: परिवारमा सबै बिरामी
1: आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदा हुँदै पनि सबै एकनासो कहाँ हुन्छ र
0: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
2: होइन चाइनाजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ हौ तलाई
0: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्यो म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
2: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
3: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
4: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
8: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा होने बारे को सूचना
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिवार का दिन तपसिल को स्थान र समय में होने भएकोले संपूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थिति का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
3: साधारण सभा होने स्थान टीकापुर योगाश्रम को हल ब्लक नंबर 18 समय बिहान 11 बजे
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-892।
5: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाई हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
6: टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
0: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
1: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
3: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
4: भैया ना करा रेडू बिक्री
5: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
3: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल से सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

महाराज परीक्षित श्री सारा संपूर्ण प्रकार को प्रक्रिया में पूर्ण भर माता श्री इस प्रभाव बाट अब म कसो करूं भगवान लौन दया को सागर भनेर विनती करने वाला छोरो राजकुमार जंगल जानु भो जंगल में पाल्नु भई सके अहिले परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री हरि यस्तो प्रभाव बाट इच्छा पूर्ण करना को लागे शाश्वत ब्रह्म ज्ञान को उपदेश को निमित्त अहिले तैयारी भएर अब कहाँ जाऊं के गरौं कसो गरौं बड़ा अप्ठ्यारो पर्यो र त्यो अप्ठ्यारोलाई भगवान परमात्मा उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजकुमार अहिले जब जब नारद नाम गरेका ऋषि को पार्श्व जंगल में पुगे आफ्नो स्वागत नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा है सद्यबाट महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव सौतारे आमा का कोप रूपी वचन को बाणबाट तीर्थ करना का लागि जंगल जानुभयो। बीच बाटो में गई सके रात्रि का समय में आमा ब्यूजन रुनु उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुवलाई नारदले सम्झाउनु राजन जान हुँदैन तिमी सानो छौ बाबा कहाँ जान्छौ भनेर सद्दाखेरिमा म उत्तनपाद राजा को छोरो ध्रुव मेरो सौतानी आमाले मेरो बाबा को काखमा बस्दा आज गलत त्यार हुराइदिनु भयो अहिले जब बाबु को काख त पाइन भनेदेखि राज्य कसरी पाउला मलाई सारी चोट पर्यो सारी मर्म पर्यो मर्म मर्ममा घाउ पर्यो यसैकारणले म जंगल जान्छु गुरु आज्ञा पाम तमाम देव आज्ञा दी बख्नु पर्यो मेरा गुरु भनेर भन्दा मेरो राजा तिमी सानो युवा बच्चा लागि कसरी आज्ञा दिऊ जंगलमा बाघ भालु हात्ती गेडा को भय मरी बसान को भय प्रेतात्माहरूको भय जान हुँदैन भन्नुभयो यसो होइन गुरु म जब मर्न तयारी हुन्छु तर फर्कन चाहन्न विधान सिकाइदिनुहोस् भन्दा लो मेरो बाबा तिमी अहिले सरासर जाऊ यमराजको उत्तरपट्टि एउटा मधु नाम गरेको वन छ त्यो मधु नाम गरेको जंगलमा गएर भगवान नारायण वासुदेव प्रभु को ओम नमो भगवती वासुदेवाय भन्ने यो मंत्र पढ़ थोड़े दिन में भगवान प्रसन्न भई बसने तिम्रो चित्त भगवान में लाओस् यही प्रकार को तिमला शुभ संदेश का साथ आज जाऊ तो भनेर भगवान प्रभु ने पठाई दिनुभयो रे उत्तरापाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजकुमार अहिले मधुवन में गए भगवान नारायण वासुदेव को पर ब्रह्म चित्त लगाई ध्यान करना लाग्नु।

महाराज परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी ले आ गया अगर लौत सौन का आदि ऋषि प्रणाली बने राजा परीक्षित का प्रतिमा सुखदेव स्वामी ले आ गया अगर ये बक्स्यो अन्य पछाड़ी बाट उत्तन पाद राजा का छोरा ध्रुव नाम को राजकुमार ने पहिलो महीना में एक महीना में के गर्नु भो तीन दिन बिराएर फल फूल खाएर तपस्या करने। दोसरो महीना में छ दिन बिराइकन हरियो सागपात खाएर तपस्या करने। तेसरो महीना में नौ दिन बिराइकन सुकेको पत्ता खाएर तपस्या करने। चारों महीना में बारह दिन बिराइकन जब वायु भोजन कर तपस्या करने। पांचों महीना में श्री ब्रह्मांड सारा संपूर्ण कर जब जब भोजन करना का लाइ ते वायु भोजन कर तपस्या करने। अनि त्यसदेखि पछाड़ी महाराज परीक्षित अब तपाई के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर राजा परीक्षित लाए। सुखदेव स्वामी ने बड़ो प्रेम का पूर्वक आज्ञा गरी बक्सो। त्यसै अवस्था का बीच में सौनक आदृशी प्रणाली भनेर महाराज परीक्षित लाए। सुखदेव आज्ञा गरी बक्सन्छ अब त्यहाँ देख्नु उपरांत तपाई के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर राजा परीक्षित को हजुरमा सुखदेव स्वामी ने आज्ञा गर्दा उत्तनपाद राजा का छोरा ध्रुव नाम गरेको राजा को समाधि जब खुलेन भगवान ने आएर उभिनु भो। पांच जनी शंकरले प्रभुले गएर गालामा छोइदिनु भएको थियो बल्ल ध्रुवको समाधि खुल्यो। युवन्त प्रवेश मम वाच मिमाम प्रसुतम संजीवैत खिल शक्तिधर विश्वधामनाम अन्यत्र हस्त चरण श्रवण त्वगालिन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुम्यम। भगवान हजुरको पाउको सेवा गर्न पाऊ मैले त हजुरलाई नचिनेको सामान्य मैले कोही सोध्दै नसोचेको आज मेरो समाधि खुल्यो प्रभु को दर्शन पाए धन्य जन्म सफल भनेकन ध्रुव नाम को राजकुमार परमात्मा का चरण में परेर ध्रुवलाई भन्नु भो भगवान ने जे माग्छौ त्यही दिन्छु के मागौं प्रभु मेरा पिताजी ने आर्जे को पुष्करा व्रत को राज्य पाऊ भन्नु भो। हे बाबा पुष्करा व्रत को राज्य तो अघि नै पाउनु पर्ने नीति में हो अप्ठारो कुरो नै होइन। बाबा को कान्छो छोरो भइसकेपछि मने जेठो छोरो भइसकेपछि पाइहाल्यो नि भन्नु भो। अब भगवान के गरौं भनेर सोधा तिमीले जानेनौ सानो उमेरको नाको कारणले राज्य सञ्चालन गर राज्य सञ्चालन पक्ष परिपूर्ण गरिसकेपछि 36,000 वर्षसम्म पृथ्वीमा राज्य गरेर कालका श्रीमा पाउरा कि तिमी ध्रुव लोक जाऊ है भन्नुभयो। जय होस् नारायण यही हो मेरो काम भनेर अहिले भगवान अन्तर्ध्यान उत्तनपाद राजाका छोरा ध्रुव आफ्नो समाधि युक्त आफ्नो दरबार सवारी सारा जनहरूले फूल गुच्छा माला सारा बाटर नमरंग का चंदुआ सम्मान गारत ने स्वागत करे घर भित्र।